0: सुधलन बना तो
1: सिगे ताना मिस क्रिशा
0: मग अम्पिंग लंता नती मामातिक दन से इमु मामातार सेला ब्रेना
1: बिकुल बान को पेरो किनहलेन नातो किनि बुहातुन मेंटस नी अनातो किनि यावी अनन क्वार्टुआ
0: सिगे ताना रेहिन ब्रेना मेंटस सो पसब दिन हि सतासन इमु मामातार सेला
1: ताना मिस क्रिशा
0: Sigurado magigka ka na dilito mo sa katinhi sa karaampay si mama ni mo.
1: Masakay to aras siya sa amo, Miss Grisha. Uwasab siya may paw. Ngani ako din sa taas ini karaang bahay.